0: कारण
1: रानी बाबू को भविष्य प्रेम मित्रता पछि को दोष निवारण
0: दान
1: ग्रह अनुसार रत्न र कवच धारण
0: कुंडली में भएका अनिष्ट योग र ग्रह शांति एवं धार्मिक अनुष्ठान वैदिक विधि द्वारा गरिन्छ।
1: सम्पर्क ज्योतिष आचार्य पंडित प्रेम प्रसाद सुवेदी ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श सेवा भरतपुर चितवन। मोबाइल नंबर 9845175223 र 9806575223। पुनः फोन बाट पनि ग्रह दशा र भाग्य को बारे में जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।